0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज अब प्रस्तुत छ कृषि विशेष कार्यक्रम बदलिदो नेपाल

आपको कहता है कि मुझ में रब दिखता है, पर मुझ में तो आप जैसी कोई बात नहीं। ये किस फेस में आप इंसानों को दिखते हो? मुझे भी आपको देखना है, मुझे भी रब दिखा दीजिए, मुझे भी रब दिखा दीजिए।

0: तो ये थी डांसिंग जोड़ी नंबर 6। इनके मां जजेस करेंगे, आगे नहीं करते हैं कुछ बात, क्योंकि अब आ रही है जोड़ी नंबर 7। प्लीज वेलकम डॉली एंड टाइनी।
1: मैं आपके साथ नहीं जा सकती राज। कुछ देर के लिए आपके प्यार ने मुझे कमजोर बना दिया था, खुद कर्ज बना दिया था। मैं भूल गई थी कि उन्होंने मेरा हाथ तब थामा था जब मैं बिल्कुल अकेली थी।

कितने बोरिंग है, ज्यादा बोलते नहीं, दिखने में सिंपल है, रहने सहने में, काम करने में, सब में बस एक मामूली आम आदमी, पर मुझे उनमें रब दिखता है। छोड़ा जाता है, मैं जहां भी भाग कर जाऊंगी वहां रब होंगे, जहां रब होंगे वो होंगे।

0: सता अपने तब किया था मैं भारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया। अब उनका सर वो नेपाल में और घड़ी आ रही है। जय
1: जय के
0: सात किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर बाकी।
2: अरे

0: इधर अपना इलाका है, चाय पानी बहुत से मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चाचा जाए रुस्तो, बस बस बस बस दो आराम से। एक मिनट एक मिनट पकड़ेगा था, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे।
1: अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे।
2: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता। ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
3: गलत बात है।
0: शाम को मिलता हूँ,
4: मेहरबानी करके कुछ कमा के घर भी ले आना, सब यात्रियों को लुटा के मत आ जाना।

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मर्संग एफएम 95 मेगाहर्ज 95 मेगाहर्ज।